गीत मेरे होठों को दे गया कोई, कभी अजनबी थे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है तेरी कसम फिल्म से, आवाज अमित कुमार की।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಭಾವಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾವಸ್ಪಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಯ ಇನ್ನೇನು 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. ಭಾವಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಗೆಳೆಯ RJ ಅಕ್ಷಯ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೆಚ್ಚಿನ ರೇಡಿಯೋ ರೈನ್ಬೋ 101.3 ಕನ್ನಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की. निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा. जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू. ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे. पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है. इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की. एक रिपोर्ट.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की. दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया. श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया. दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया. दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की. दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया. सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है. आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है. दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे. निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है. आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं. आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है. इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी. कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे. कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी. विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग

कोस रुदन करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
3: भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिवी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का

0: कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, AI से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट JEE में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक। नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची SIT, रडार पर हैं 100 लोग। ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं। राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯಾ? ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ CBSVLR@

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ಡೂಡ್, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಏನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆಯೇ?
4: ಖಂಡಿತ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ 24 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬಟ್ಟವಾಡೆ.
3: ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಟವಾಟೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?
4: ಹೌದು ಸಹೋದರ, ನೈಜ ಸಮಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ದರಗಳು.

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है. बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी. वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग. ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते. आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज.

0: Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
5: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल

0: होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओ, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपर्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहां से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई

0: प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है?
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी,
9: आज सुबह हम समाचार

0: समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
1: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
0: ये किसी खुदरे से शीट की तस्वीर है। इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
0: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है
1: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
0: अच्छा।
1: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
1: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
1: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
1: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
0: अच्छा।
1: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
0: एपिग्राफ।
1: शाबाश निधि।
0: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
0: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए।

0: और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
1: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
0: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी,
0: लेकिन आज श्रोताओं आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: ಶಾಬಾಷ್ ಶಾಬಾಶ್ ಮೋತಿ, ಶಾಬಾಶ್. ಆಜ್ ತುಮನೆ ಖೂಬ್ ಸಾಥ್ ದಿಯಾ. ಹಾಂ, ಮೈ ಜಾನ್ತಿ ಹೂಂ ಕಿ ತುಮ್ ಥಕ್ ಗಯೆ ಹೋ, ತುಮ್ಹೇ ಪ್ಯಾಸ್ ಭೀ ಲಗ್ ರಹೀ ಹೈ, ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಕರೋ, ತುಮ್ ತೋ ಶಿಕಾರ್ ಕೆ ಪೀಛೆ ಇತನಾ ತೇಜ್ ದೌಡೆ ಕಿ ಅಪ್ನೆ ಸಬ್ ಸಾಥಿ ಪೀಛೆ ಛೂಟ್ ಗಯೆ. ಚಲೋ, ಕುಛ್ ದಿನ ಯಹೀ ಆರಾಮ್ ಕರ್ತೇ ಹೈ, ತಬ್ ತಕ್ ಬಾಕಿ ಲೋಗ್ ಭೀ ಆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे. अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं. इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है.
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में.
0: आपने मेरा रूप तो देखा पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है.
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते.
0: बस बस, वहीं खड़े रहो. शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ.
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती. अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया. अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं. इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं. ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए. अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो. क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार. आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा.
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब

0: दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा
2: वाह। और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
3: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
4: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
5: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कद्र करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए। कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं, समस्त गोंड राज्य की माता है।
5: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
4: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
6: अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन,
7: अलख निरंजन। ए साधु बाबा।
6: अब अच्छा,
7: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
6: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
7: क्या?
6: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
7: है?
6: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
7: अच्छा?
6: हाँ,
7: बहुत बड़ी फौज है।
6: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
7: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
6: अच्छा,
7: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
6: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
7: बिल्कुल है।
6: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
7: उसका भी इंतजाम है।
6: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
7: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
6: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
7: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
6: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
7: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆ? ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಏಕೆ? ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ cbsblr@gmail.com.

0: ಇದುವರೆಗೂ ಒಲವಿನ ಆಲಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸಮಯ ಇನ್ನೇನು 8:45 ಆಗಲಿದೆ. 8:45 ಸರಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ. ಅದಾದ ನಂತರ 9:00 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು. ತದನಂತರ 9:15 ಸುಕೋಂ ಕಿ ಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित. पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे. रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी. सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी. फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा. और अब समाचार विस्तार से. भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी.
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है. पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था. पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा.
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं.
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है. इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है. तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं. तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे.
2: तीस्ता इश्यू.
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है. भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है. नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है. श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है. श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं. उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे. विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे. उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी.
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे. वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है. यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे.
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी. अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे. श्री मोदी न्यूजीलैंड के

0: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
3: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन

प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आर्थिक मंत्र हाजिर है। श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे। चर्चा शुरू करेंगे, मगर इससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
1: The benchmark domestic indices end with modest gains. Sensex climbs over 250 points. Nifty settles at 24,271. Major Asian stock markets settle in the positive zone and the Indian woodland market gold and silver prices rise.
0: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, Sensex 250 अंक बढ़ा, Nifty 24,271 पर बंद हुआ। एशियाई शेयर बाजार में बढ़त के साथ एशियाई शेयर बाजार में बढ़त रही और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम बढ़े।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया? घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली बढ़त हुई। सेंसेक्स 262 अंक यानी 0.3% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक यानी 0.4% बढ़कर 24,271 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग सपाट रहा। बाजार बढ़त के साथ खुले और पहले के आधे सत्र में तेजी का रुख रहा, लेकिन दूसरे सत्र में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और आज मिलाकर लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए।
0: The benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 262 points or 0.34% to close at 77,764. The Nifty also added 95 points or 0.4% to settle at 24,271. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index slipped 0.2%, while the small-cap 100 index ended nearly flat. Earlier, the markets opened higher and maintained upbeat momentum throughout the first half. However, in the latter half of the session, both indices paired their early gains amid profit booking, but managed to close higher for the third consecutive session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में HCL Tech 5.8%, बजाज फिनसर्व 2% से अधिक और टेक महिंद्रा तथा भारती एयरटेल 1.8% बढ़े। वहीं बात खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की करें तो एक्सिस बैंक 1.5% से अधिक, SBI तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% से अधिक गिरे और लार्सन एंड टूब्रो में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, Realty jumped 2.2%, Focused IT rose over 1.7%, and IT climbed more than 1.5%. In contrast, Power plunged 2.4%, Capital Goods fell almost 2.3%, and PSU banks lost over 1.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,257 companies advanced, 1,986 declined and 198 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 17 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए और 22 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में 100.71 पर कारोबार कर रहा था। विशाल, आज की ट्रेजेक्ट्री को आप कैसे आंकते हैं, मार्केट ट्रेजेक्ट्री को?
2: देखिए प्राची, आज तो सब तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है। अगर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी ऊपर है और सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल है। हालांकि ग्लोबल मिक्स्ड क्यूज

0: मोटे तौर पर अगर देखा जाए और समझने की कोशिश करें तो आईटी सेक्टर जिसने पिछले हफ्ते काफी नीचे खींचा था मार्केट को, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेक्टर से संबंधित जो स्टॉक्स थे उनमें जिस तरह की गिरावट दर्ज की गई थी वैश्विक स्तर पर, उसका सीधा असर भी देखने को मिला था। लेकिन ये आज अच्छा रिबाउंड है, लगभग 2% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी है आईटी सेक्टर के, और आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर रहा है आज बाजार के ऊपर पहुंचने में, ऊपर आने में। इसके अलावा कुछ ग्लोबल क्यूज है, जैसे कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अब लगभग राहत की बात यह है कि थोड़े पॉजिटिव संकेत इस तरह के मिल रहे हैं और थोड़े पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। पॉजिटिव संकेत तो लगभग हर हफ्ते मिलते थे और फिर वो नेगेटिव में बदलते थे, लेकिन इस बार शायद पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि अब ये लड़ाई खात्मे की ओर है। लेकिन उससे बड़ी बात यूएस जो जॉब मार्केट का जो डेटा आया है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अब हालांकि सीधे सीधे देखा जाए तो पिछले 4 महीने में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है जो नई नौकरियां बनी है यूएस की मार्केट में, और इस लिहाज से देखा जाए तो वो कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां फेड रिजर्व के नए गवर्नर आए हैं, उनका स्टैंड बहुत ही हॉकिश है, और उसके चलते ये जो डेटा है शायद ये डेटा थोड़ी सी राहत प्रदान करे इस मामले में कि शायद जो फेड रिजर्व है वो उसका जो हॉकिश स्टैंड है उसमें थोड़ी सी ढील बरतें वो, और इसीलिए शायद जो इन्वेस्टर्स है खासतौर पे जो यूएस के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका नजरिया मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही माना जाएगा। और अगर अमेरिकी बाजार में कुछ पॉजिटिव नजर आता है तो उसका असर बाकी बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पॉजिटिव ही दिखाई देता है, अगर कोई और बड़ी खबर या कोई और बड़ा कारण ना हो तो।
1: Vishal, I'd like to draw your attention to the broader market here. If you look at the mid-cap and the small-cap segment, you know, we have been seeing this uptick in the overall market for the past few sessions now. But this broader market has not been quite performing up to that level, you know, up to the, you know, the level which people would have expected. So what do you see the reason behind this?
0: Well, I think, Nishit, let's not...
1: Mid-cap slip, although it's a marginal slip, 0.2%.
0: Yeah.
1: And the small cap was flat today, but mostly it's not kind of picking up, you know, kind of keeping pace with the overall market.
0: I get the sentiment, you know. Usually it's not about it's not performing well. It's about, you know, why are we not picking? Why is the market not picking it?
1: True.
0: You know, taking up that pace.
1: Yes.
0: Now let's not, and when we look at this question largely, we should also look at a little bit of a context here. Now, if we contextualize it and if we go back a little bit, this is not the case today. This was not the case in the past 3 days. If we do a larger understanding of the scenario for the past month or 2 months or 3 months as well, let's also understand that there was a lot of pressure on the market in terms of a lot of negative global cues. The crisis in the energy sector, the oil prices going up and then coming down, then again going up. A lot of, confusion as far as investors are concerned. And that also led to a lot of, outflow of FII as well from the market. That is something which it takes a little bit of a time for the market to, take those positive cues which are coming in right now, absorb them and, pick up the pace. It is picking up the pace in certain sectors, one here, two there, or maybe going a little flat in certain sectors as well. But it will take some time. I'm pretty sure it'll come back. There are positive cues coming in, but yes, they're absorbing it and perhaps realizing investors are very smart, they're the smartest of the lot as far as, economic aspect is concerned. So they would not put their money where they don't think, they will get some return in the long run.
1: Vishal, you mentioned about the energy crisis. Of course, courtesy of the West Asian crisis has happened. But if you look at the power sector here, it's been, it has performed exceptionally well over the past 2-3 months, if you may say. But over the past 10 sessions or 15 sessions, it's been kind of plateauing now, or rather slipping. Even today, if you look at the sector, it plunged 2.4%.
0: Well, that's a simple mathematics out there, Nishit. The point is that when the energy crisis hit, of course, the power sector was pretty much in demand. There was a lot of... it's like a demand and supply gap. That's one. And two, the power sector companies, did not...

0: disappoint they did not flounder when the focus was all on them. And that is why this demand and supply gap, which was there due to energy crisis and all that happening, all eyes on the power sector, you know, as long, let's look at what is it that can be done. And that perhaps was the momentum. Right now, you know, again, we come back to the same situation. The oil prices are coming down. The energy crisis is ebbing away. So, you know, that gives a bit of a elbow room as well. So it might sound very amusing, right, but this is how it happens, you know.
1: Right.
0: In the stock market, this is how it's going to happen.
1: Right.
0: Of course, that doesn't mean that the fundamentals of a particular sector or a particular company or their performance or their management does not count. It does count. But yes, if there are global factors, sometimes they overshadow the overall situation and the performance as well.
2: Vishal, apne power ke kshetr ki baat ki, aapne IT ke bare mein bataya, apne ye bhi beech mein bataya ki aisa kahin par bhi agar lagta hai ki khatra hai paise ko nishit, to kyun koi jayega aur us sector mein, us kshetr mein apne paise lagayega. To niveshakon aur hamare program ke shrotaon ki nazar se aap agar dekhe ise, to aap kya suggest karenge, aapke hisab se aise kaun se kshetr hain jinka momentum aapko is dauran mein badhta hua nazar aa raha hai?
0: Dekhiye, main to hamesha isi baat ko kehta hu ki niveshakon ke liye chahe wo chota ho chahe wo bada ho, अगर जो शॉर्ट टर्म असेसमेंट करने की कोशिश की जाएगी, तो मेरा मानना है कि वो शॉर्ट टर्म असेसमेंट हमेशा अगर हमेशा नहीं तो ज्यादातर समय पे गलत ही साबित होगी. क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, आप हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं. आप अगर शॉर्ट टर्म मान के भी चलते हैं तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रहेगी, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़े दिन और देख लेते हैं, तो वो अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाएगी. तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म फैक्टर्स को असेस करिए. आप ये मत देखिए कि पिछले एक हफ्ते में किसने अच्छा किया या पिछले 15 दिन में किसने अच्छा किया. ऑफ कोर्स पिछले दो महीने में जब ये पूरी ग्लोबल क्राइसिस रही, तो रेजिलियंस किस सेक्टर का था, रेजिलियंस किस पर्टिकुलर कंपनी का था, वो बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं, नंबर एक. नंबर दो, ग्रोथ किस सेक्टर में है. नंबर तीन, क्या केवल ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं, या ग्रोथ इसलिए भी है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है. तो इस तरह से जो सेक्टर्स को अगर चूज किया जाए, तो हमेशा से जो पिछले लगभग साल दो साल से जो सेक्टर्स बने हुए हैं और अभी भी वही बने हुए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर स्पेस हुआ या फिर उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, पावर सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कभी गिरावट दिखाई दे सकती है. आईटी सेक्टर इज ऑलवेज अ ग्रीन सेक्टर. एआई ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप में थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की ताकत है और शक्ति है, तो अगर जो झटके बीच बीच में मिलेंगे उसको, तो मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचिए.
1: राइट,
2: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुख करते हैं एशियन बाजार की तरफ. आज एशिया का शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 5.8% बढ़ा. पिछले सत्र में हुई भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने कम कीमत वाले सेमीकंडक्टर शेयरों की आज खरीदारी की. इधर जापान का निकेई 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.5%, और ताइवान का ताइएक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. विशाल, अगर हम वैश्विक टेक ट्रेंड की बात करें तो नैसडैक एक महीने में तकरीबन 3% गिरा है, कॉस्पी 13% गिरा है, वहीं जो महीने भर में निफ्टी है वो 3.3% उसमें बढ़त आई है. तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल टेक ट्रेंड में रिवर्सल है?
0: देखिए, मैं टेक ट्रेंड में रिवर्सल तो इसे नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हम कॉस्पी की बात करें या नैसडैक की बात करें और भारतीय बाजारों की बात करें, एक इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं
2: जी.
0: और जहां गिरावट ज्यादा दर्ज हुई है, वहां अगर आप थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी पे और गहन तरीके से नजर डाल के देखें, तो ये भी समझ में आएगा कि वहां जितने पॉजिटिव क्यूज डोमेस्टिकली मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले उन बाजारों को. भारतीय बाजारों को पॉजिटिव क्यूज हमेशा मिले. और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ग्लोबल क्राइसिस थी, जो वेस्ट एशिया में जो हो रहा था, मध्यपूर्व में जो हो रहा था, उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस थी, उसका सीधा और बड़ा असर इन बाजारों और इन देशों में देखने को मिला. हम पर भी असर पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि हम पे नहीं असर पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ा, उस लेवल तक नहीं पड़ा. और हमारे जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक और बाजार के, मार्केट्स के भी, उनमें इतनी कुवत थी कि वो उसको, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए. इन बाजारों में और इन देशों में भी है, लेकिन इनकी निर्भरता हमसे कहीं ज्यादा है
2: जी.

0: जहाँ है मुझे लग रहा है इस वक्त जहाँ है वहीं टिके रहने की उम्मीद है। अच्छा। और उसका सीधा इंडिकेशन ये दिखाई दे रहा है कि बाकी सब जगह सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए सोना और चांदी अपना अपने अपने स्थानों पर यथावत बैठे हैं। ज्यादा उठापटक उसमें नहीं दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उठापटक थोड़ा और आगे तक दिखाई भी नहीं देगी।
1: Will it kind of plateau for another maybe a decade or so? As the history, you know, if you go by the history.
0: I'm not going to stick my neck out and say a decade or so, but yeah, but maybe for some time at least.
2: Vishal, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: Thank you.
1: Thanks, Vishal. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with modest gains. Sensex climbs over 250 points. Nifty settles at 24,271. Major Asian stock markets settle in the positive zone and an Indian bullion market, gold and silver prices rise. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मन मीत लेकर स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। जी हाँ दोस्तों, इस गहरी काली रात में सदाबहार गीतों का साथ जो कि बना रहेगा आपके साथ। वो कहते हैं ना, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चरागों का सफर कितना है। ये सफर आप तय कर रहे हैं दोस्तों 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आइए आगाज करें आज के इस प्यारे सफर का तेरे घर के सामने फिल्म के गीत से। और इस गीत में आवाज दी है रफी साहब ने, लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत से सजाया ST पावन जी ने।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। तो और ये रात जो कि महक रही है चांदनी से, और इस प्यारे से समय में ये बेहद प्यारे सदाबहार गीत आप तक पहुंच रहे हैं। ये अगला गीत प्यार का मौसम फिल्म से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गीत को लिखा है मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया है ST बर्मन जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में, तो ये अगला अंदाज शागिर्द फिल्म से आप तक पहुंच रहा है। रफी और लता जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज से सजाया मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो आइए सुने ये प्यारा अंदाज़।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि और आज के सफर को आगे ना बढ़ाएं। तो फिलहाल मुझे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया

0: प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहाँ भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहाँ संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैड बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका के डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानरे को 6-1 6-3 से मात की दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, तुमने इतनी बार बारिश देखी है जीवन में, पर अब भी बारिश देखकर लगता है जैसे कोई जादू पहली बार देख रहे हो। तुम्हें मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि रोज़ तुम्हें देखना कैसा होता है।

0: स्वादिष्ट एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 2 सेकंड। निशिकंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ के साथ।
1: अरे

0: वाकई हवा के साथ साथ और घटा के संग संग चलना ही जिंदगी है। कुछ गाने हमें ये एहसास दिलाते हैं कि सफर हो या मंजिल, रंगत तभी आती है जब मन खुश हो। अगला गीत फिर से आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

मोहब्बत में कश्मकश ही ऐसी होती है, समझ ही नहीं आता, दिल की बातें जुबा तक आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, समझ नहीं आता कि उन्हें बयां कैसे किया जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि कह देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आती है। क्या कहते हैं आप? अब ये भी कोई पूछने की बात है, सफर वही जो साथ साथ तय किया जाए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

सच में मुंबई की बात ही अलग है। मुंबई का नाम आते ही बहुत सी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, वहाँ की लोकल ट्रेनें, समंदर, सब सब कुछ जहन में फिर से एक बार याद आने लगता है। मुंबई का अपना ही एक रंग है, अपनी ही एक दौड़ है, कहीं पहुँचने की, कुछ पा लेने की, कुछ ख्वाबों को पूरा करने की। फिलहाल हम भी एक दौड़ में शामिल हैं और इस दौड़ को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना करीब आएगा, और जब वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी कविता फीकी पड़ जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर बंजू। वक्त वह है 12:38 और 42 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में,

जब दीवानगी का ऐलान हो ही गया है तो फिर दीवानों को रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी हो या फिर मोहब्बत, दोनों को दीवाने ही सबसे ज्यादा समझ पाते हैं। और वैसे भी दिल में जब प्यार का जज्बा होता है तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। इस दीवानेपन को और आगे बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

अपनी दुनिया में और शायद अपने लोगों के पास। कभी कभी अपनी दुनिया में लौट आना ही सही विकल्प होता है, खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए। हम दूसरों को समझते और समझाते हुए अक्सर खुद को समझना भूल जाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। खुद को समझना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल स्थगित रहेगी। विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैट BMS इपॉक IIN और लॉसिंगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1, 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1, 6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty, IWT, remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randeep Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to development assistance to Bangladesh. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve $1 trillion export targets for the year, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that this will require goods exports to rise from about $440 billion to around $530 billion and services exports to increase from roughly $421 billion to about $470 billion. He further said that it expected that merchandise exports growth will show 15% growth and services exports is about 10 to 11% in the first quarter. Mr. Goyal also highlighted that India had concluded financial year 2025-26 with its highest ever exports of $863 billion, registering growth of 4.6% despite tariff realignments, freight disruption and slowing global demand. He also announced a time-bound 90-day drive under the districts as export hubs initiative covering 120 priority districts across 27 states and union territories. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat today. In Rajasthan, the Prime Minister will inaugurate the terminal building of Jodhpur Airport and launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, he will travel to Balotra to dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.6 lakh crore rupees in petrochemicals, urban transport, renewable energy and power transmission. During Gujarat visit today, in a major boost to the India semiconductor

मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास से, स्मृतियों से हमें आवाज़ देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ।

चौदहवीं का चांद से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत बहुत ही सुरीली आवाज में, यानी रफी साहब की आवाज में। संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी साहब। फिल्म चौदहवीं का चांद 1960 में प्रदर्शित हुई थी और इसका निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने और निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज के फूल की असफलता के बाद गुरुदत्त साहब के लिए ये फिल्म कामयाब फिल्म रही और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक फिल्म थी ये। रवि द्वारा निर्मित संगीत को काफ़ी लोकप्रियता मिली और दर्शकों द्वारा इस फिल्म के संगीत को खासा सराहा भी गया। और अब अगला गीत हम सुनते हैं फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में।

रफी साहब की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। फिल्म का नाम था असली और नकली, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। फिल्म असली नकली 1962 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म को निर्देशित किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। देवानंद, साधना, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन, संध्या रॉय और केस्टो मुखर्जी ने इस फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। और अब अगले गीत की बारी, लेकिन अगले गीत को आप तक पहुंचाने से पहले अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गीत रात के जज्बात को और गहरा करता है। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आप ही के लिए।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म अनाड़ी से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। अगर फिल्म अनाड़ी की बात की जाए तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 1959 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मोतीलाल ने। इस फिल्म के गीत लिखे थे शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब। अब जब रात की बात छिड़ी है तो फिर रात का मुसाफिर क्या कह रहा है, सुन लिया जाए अगला गीत लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज़ में फिल्म मिस मैरी से।

फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत चित्रगुप्त का और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब। अगर इस फिल्म की बात करें यानी कि ओपेरा हाउस फिल्म की हम बात करें तो ये फिल्म आई थी 1961 में और ये एक रहस्यमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में अजीत बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने अभिनय किया था। और अब अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म बहू बेगम से।

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाजें थी आशा जी और रफी साहब की, संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। फिल्म बहू बेगम 1967 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। संगीत रोशन साहब का था और इस फिल्म के संगीत को दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा गया और ये गीत, इस फिल्म के जो गीत हैं वो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म तीसरी कसम से।

वक्त हुआ है 1:54 और 22 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने मेरे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू के साथ। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।

गीतों का यह सफर ऐसे ही जारी रहेगा। अभी वक्त है समाचारों का। 2 बजे सुनेंगे आप समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और केमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए।

रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपॉक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1 6-3 से मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

उसने बड़े अदब से पूछा, अगली मुलाकात कहाँ होगी? मैंने कहा, आसमानों में, दो बादलों की टकरार में, भीनी माटी की खुशबू में, खिड़की पे बारिश की बूंदों में, मोगरे के फूलों में, अदरक वाली कड़क मीठी चाय से उठते उस धुएं में, रहमान के किसी गाने की धुन में, रुके हुए से ट्रैफिक जैम में, शर्ट के टूटे हुए बटन में, गहरे काले काजल में, पहाड़ों में, बहते झरनों में, कहीं साहिल तो कहीं किनारों में, मौसम की बहारों में हम मिलेंगे ज़रूर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात के हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 15 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी कि जज्बातों की रात, एहसासों की रात। और इस प्रोग्राम में हम रात के जज्बात को, रात के दर्द को अपनी बातों से, गीतों से और कुछ कुछ शायरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आपको पता है जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडियो में हवाएं चलने लगी हैं सच में, और टेम्परेचर भी कुछ कम हो गया है। इस गाने का एक एक सुर सीधे दिल में लगता है और दिल में लगने के साथ सीधे दिल में असर करता है। अगर आप भी इस गाने को सुनकर किसी के ख्यालों में खो गए हैं, किसी की यादों ने आपको घेर लिया है, तो अगला गीत आप ही के लिए, अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

0: कभी कभी।
1: वैसे ये तो सच बात है कि मोहब्बत किस्मत वालों को ही मिलती है, और जब मिलती है तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर ये मोहब्बत इतनी ही अनमोल है, इतनी ही कीमती है, तो लोग इसे संभाल कर क्यों नहीं रखते, छोटी छोटी बातों पर रूठ क्यों जाते हैं। खैर, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपका ख्याल रखता है, तो आपको खुदा को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में।

मन में तितलियां उड़ी, कुछ जादू सा लगा। सच में इस गाने की खासियत ही यही है, एक जादू सा एहसास से भर देता है ये गाना। वैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप बस यूं ही बैठे हों और अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए और फिर बिना कुछ कहे आपके दिल में समा जाए? आपको पता है फिर कैसा लगेगा? फिर ऐसा लगेगा शायद इस गाने जैसा। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। कहानी रुख बदलना चाहती है, कहानी रुख बदलना चाहती है, नए किरदार आने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, परिंदे आने जाने लग गए हैं। हम अपने दुख गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। स्वादिष्ट मिलो एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:42 और 6 सेकंड, और आप सुन रहे हैं रात सुरमई, रात की सुरों को, रात के जज्बात को, रात के एहसास को, रात के दर्द को गीतों से, बातों से समझने की, महसूस करने की एक छोटी सी कोशिश। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में अभी के लिए।

सच बात है, कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनके बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता है। वो चाहे हमारे पास हो या हमसे दूर हो, उनकी मौजूदगी हर पल हर सांस में महसूस होती है, बिल्कुल हवा की तरह, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर उसके बिना जी भी नहीं सकते। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम रोज ना जाने कितने अनजान रास्तों से गुजरते हैं, कितने ही चेहरों को देखते हैं, पर कभी कभी बस यूं ही चलते चलते कोई ऐसा मिल जाता है जो अजनबी से सीधे हमारी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाता है, खास इंसान बन जाता है। ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई तैयारी होती है, बस एक मुलाकात होती है और पूरी तकदीर बदल जाती है, जिंदगी की कहानी बदल जाती है। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में आप ही के लिए।

गीतों का ये सुरीला सफर यहीं तक। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपॉक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है।

फीफा विश्व कप में अमेरिका के आर्लिंगटन में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशुर ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डे से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राज़ील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समझ

दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं FM गोल्ड पर और हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

यादों की बारात। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और संगीत आर डी बर्मन का। अगला गीत आप सुनेंगे कस्मे वादे फिल्म से, आशा भोंसले और किशोर कुमार और अमित कुमार का गाया हुआ है। शब्द रचना गुलशन बावरा की है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, ये तो हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में खुशियों की बहारें आती रहें, लेकिन बहुत बार आप छोटी सी बात का बुरा मान जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। और नाराज आप क्यों होते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि वो आपको मनाएंगे।

दोस्तों, एफएम गोल्ड पर हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत आप गीत सुन रहे हैं, यानी युगल गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

हमने बस यही जाना है दिल तुम्हारा दीवाना है हमने बस यही जाना है दिल तुम्हारा दीवाना है।

दोस्तों बहुत बार प्यार भी मुसीबत बन जाता है, या नहीं यूं कहें कि अफसाना बन जाता है कोई ना कोई। आपको बता दें कि ये गीत आपने सुना प्यार बना अफसाना फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी। गीत की रचयिता थे अजीज कैसी और धुन बनाई थी इकबाल कुरैशी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म से, गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में है, शब्द रचना गुलजार की और संगीत आरडी बर्मन का।

दोस्तों, पहले के दौर में जब मोहब्बत की बात हुआ करती थी तो बात सुनकर प्यार करने वाले शर्मा जाया करते थे और प्यार करने वाले उसका प्यार आंखों से ही पढ़ लिया करते थे।

झुके जो तेरे नैना। कंगन फिल्म से ये गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और उषा खन्ना का गाया हुआ गीत था अनजान का, और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं साथ साथ फिल्म से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का गाया हुआ है, जावेद अख्तर के बोल हैं और कुलदीप सिंह का संगीत।

सागर फिल्म से ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत को रचा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं प्यार का, सागर फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रेम धवन ने गीत को लिखा है और रवि का संगीत।

दोस्तों सच में जो प्यार करने वाले होते हैं वो यही सोच कर डरते रहते हैं कि कहीं उनका साथ छूट ना जाए। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ। संतोष आनंद का लिखा गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, हम रही कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। जुड़े रहिएगा FM गोल्ड के कार्यक्रमों के साथ। अगले कार्यक्रम अरुणिमा में 4:11 पर फिर से मुलाकात होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालूतारा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़ंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा,

दोस्तों बहुत से गाने जब चलते हैं तो साथ साथ गुनगुनाने में भी उनको बहुत मजा आता है। आपने ये गीत सुना महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी, SH बिहारी के बोल थे और OP नैयर का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं खुशबू फिल्म से, गीत किशोर कुमार की आवाज में है, गुलजार ने गीत के बोल दिए हैं और संगीत से संवारा है RD बर्मन ने।

दोस्तों, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान को लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं रहा, और वैसे भी अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं मंजिलों को पाने के लिए।

दोस्तों, इस गीत में बहुत अच्छी पंक्तियां थी कि बिछड़े दिलों को मिलाते चलो। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी में भी आपस में अगर कोई बात हो जाती है तो लोग आपस में बोलना छोड़ देते हैं, फिर कोई ऐसा काम करता है तीसरा बंदा आकर कि उन दोनों के बीच में और लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समझदारी से उन दोनों को दोनों का ही पक्ष लेते हुए समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, बात हो गई तो आया जाई करो, आया गया करो इस बात को। तो यहाँ पर बिछड़े दिलों को मिलाने की बात सही साबित होती है। तो हमारा भी काम यही रहना चाहिए कि अगर किसी की बात में कोई आपस में मन में रंजिश पैदा हो गई है तो हम उनको मिलाने का काम करें, ना कि उनका दिल में जो प्यार पहले था उनमें दूरियां पैदा करें।

लेकिन हम अभी कहीं भी नहीं जा रहे हैं। प्यासा सावन फिल्म से आपने गीत सुना, आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ, और लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ था ये गीत। आनंद और गुलशन बावरा का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दूसरों अगला गीत सुनवाएंगे लेकिन अंतराल के बाद।

हिमालय की गोद में, इस फिल्म में से अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा गीत था और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, हर इंसान सपने बुनता है और सपनों को पूरा करने के लिए पूरे दांवपेच लगा देता है और फिर उसको लगता है कि अब उसका जीवन बहारों जैसा हो गया है।

आखिरी खत। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ, कैफी आजमी की रचना थी और खयाम का संगीत। दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है गीतों के साथ।

दो बदन। इस फिल्म से आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में। शकील बदायूं की रचना थी और संगीत रवि का। ठंडी हवाओं में दोस्तों अगर यूं ही कोई मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना।

बेटी बेटे, इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। दोस्तों, अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ सुजाता फिल्म से, जो बचपन की याद दिलाता है। बचपन दोस्तों वाकई में ही गुजर जाता है वो लम्हे, और बड़े होने तक हमें वो बातें याद आती रहती हैं।

0: कभी कभी।
1: और अब कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ आया सावन झूम के इस फिल्म से ये गीत।

जाने का तो दोस्तों किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन जाना तो पड़ेगा इस कार्यक्रम को खत्म करके। और इसके साथ ही अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ

0: करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र बांटने का काम अभी चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 13,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन और अपडेट के लिए पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां देंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। सरकार ने बैट बीएमएस ईपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से हॉकर 800A विमान की नीलामी की है। विमान को 3 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इस विमान को पिछले वर्ष 7 मार्च को तलाशी अभियान में जब्त किया गया था। ईडी की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान को जब्त किया था। जांच में 792 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना मिली है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning.

दोस्तों, जब भी मैं ये प्रार्थना सुनती हूँ तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी वो कविता याद आ जाती है, आत्मत्राण, जिसमें कवि ने कहा है, विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना, नहीं सही पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो कितनी अच्छी कविता की पंक्तियां हैं और इस गीत में भी, इस रचना में भी हमें सुनने को मिलती हैं कि हमें शक्ति देना दाता। इंसान तो दोस्तों काम करता ही रहता है, लेकिन उस काम में हिम्मत वो दे दे तो शक्ति बढ़ जाती है, यानी काम करने में मन दोगुना हो जाता है।

दोस्तों सच बात है, ये तो इंसान के बनाए हुए नियम है। भगवान तो हमें विवेक से भेजते हैं, हमारी बुद्धि यहाँ आकर इस दुनिया में कैसी हो जाती है ये हम पर निर्भर करता है, और हमारी बुद्धि सही रहनी चाहिए।

दोस्तों, हम भी तो यही चाहते हैं कि आराधना सबकी सफल होनी चाहिए। आराधना फिल्म से ये गीत आपने सुना, सचिन देव बर्मन का गाया हुआ था। आनंद बख्शी ने गीत को रचा था और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान अपने व्यवहार से ही अपने आप को बता देता है कि वह कैसा है, और उसके बातचीत करने का ढंग या हाव भाव हम पर कैसा असर छोड़ते हैं, ये सब पता चल जाता है।